0: कितने साल ये थे गया? एक साल हुआ, सारे
1: सत्रह साल
0: थे, एक साल हो गया. तो पहले आप किधर थे, जमींदार के पास थे? कौन से फसलें ज्यादातर करते थे? तो आपका कर्ज था?
2: कर्ज पहले था, अब उसके बाद तो नहीं था.
3: स्कूल में तो
4: स्कूल बाल हो रहे थे, बाल मरता थे
5: ज्यादा नहीं जाए ना, ज्यादा बन
4: हमने ये थे दी नहीं. तो फादर ही हो दी
5: नहीं मेरी नहीं है,
4: पर फादर क्यों रही से भले रही, पर तो हमें उन बिहार आवी नहीं हो फादर.
0: जमींदार ने शादी हो इते आया तो जिंदगी हयाती में की फर्क से, फायदो से या नुकसान से?
4: फायदो से जी, अब ये पे बैठा
1: लडाड़ तो
4: कोई कोई लडाड़ी नहीं तो, अब ये फायदो से जी लडाड़ी नहीं तो वो था तो मन का टप्पड़ खणू होए. ये तो अब बाल पढ़े रे स्कूल जाए,
0: स्कूल से
4: होए, स्कूल
0: जमीन से
4: होए, जमीन ये अब मम्मी आप रही करी बैठा जेड़े मारे आप रही तई दे जी को प्लाट से बाकी स्कूल में बाल जाए बने.
0: The church in many parishes around the diocese has bought land near the towns and given plots of land